0: फिर पेमेंट वाले आ जाते हैं। तो पेमेंट का जो हमारा AI है वो फिर आपसे पेमेंट लेता है और आपको भी इनवाइस बना के देता है, और आप अपना एडवांस पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, या आप अपने बैंक में जाकर उसको कर सकते हैं।
1: ये सारा सिलसिला पहले बनाना फिर उसको फ़रोग देना आसान नहीं रहा होगा, कैसे चैलेंजेस आए, कैसी मुश्किलात आई?
0: जी, सबसे पहले तो जब मैंने जापान में आया और वहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, मतलब हर तरह का चैलेंज था, नया कल्चर था, नई ज़ुबान थी। जब आप कुछ भी चीज़ बना लेते हैं, ज़ाहरी बात है आपने उसको मार्केट में लेके जाना, तो वो मार्केट में मैं चाह रहा था बेस्ट से बेस्ट लोगों के पास पहले अपने आइडिया को लेके जाया जाए। तो वो जब मैं लेके गया तो वो ज़ाहरी बात है वो जापानीज़ थे, वो जब बेस्ट थे तो उनके सवालात भी बेस्ट थे और उनके स्टैंडर्ड भी और उनके मेयार भी बेस्ट थे। उनको मैच करना, उनको अबूर करना और उनको उनसे ये एंडोर्समेंट लेनी कि यस दिस इज़ समथिंग न्यू और इसके ऊपर एतमाद किया जा सकता है, क्योंकि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी का API लेना और अपने सिस्टम से इंटीग्रेट करना ये कोई सादा बात नहीं है। ये बहुत बड़ी उनको अपनी अंदरूनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा कंप्लायंस और उनकी सारी परमिशन से गुजरना पड़ता है, तो शायद ये सबसे मुश्किल तरीन काम था।
1: आप मुझे बताइए कि काफ़ी अर्सा हो गया आप जापान में हैं, तो इस सफ़र का आगाज़ कब हुआ, जापान की तरफ किस चीज़ ने माइल किया या क्या चीज़ आपको खींच लाई जापान में?
0: मेरे ख्याल में सबसे सादा जवाब इसका तकदीर है, लेकिन अगर आप ज़िंदगी के मामलात के हिसाब से देखें तो यहाँ पर यही पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए आए थे, लेकिन कभी ये नहीं समझा था कि जापान हमारी ज़िंदगी का एक इतना बड़ा हिस्सा बन जाएगा और हम जापान से इतना कुछ सीखेंगे। बहुत कुछ सीखा है हमने जापान से, ये भी सीखा है कि ज़हानत नहीं, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो है वो इंसान को कामयाब करता है। और यहाँ पर जैसे जो इकदार हैं यहाँ पर, वो कारोबारी मामलात में अगर आप उनको अडॉप्ट कर लें तो कामयाबी यकीनन हो जाती है, यानी कि आप वादे की पासदारी करें, किसी को गलत बयानी ना करें। तो हमने ये उनसे सीखी और वो हमारे लिए, मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुई।
1: तो मुझे थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक है, कुछ थोड़ी सी वो बात बताएं।
0: जी, पाकिस्तान में मेरा फैसलाबाद से ताल्लुक है, पैदाइश मेरी सरगोधा में हुई लेकिन मेरी सारी परवरिश फैसलाबाद में हुई। कारोबार अभी हम लाहौर से कर रहे हैं, तो मेरा पाकिस्तान में काफ़ी सारी जगहों से ताल्लुक है इस हिसाब से। एजुकेशन जो है वो मैंने जो अपना कॉलेज था वो मैंने पाकिस्तान से किया, उसके बाद मलेशिया से मैंने अपना ऑस्ट्रेलियन प्रोग्राम था 2-in-1 वो मैंने वहाँ से मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया से किया। फिर मैंने एक मास्टर्स जो था अपना वो रशिया से किया, यूक्रेन से, और फिर जापान आए, और रिसेंटली अभी मैंने अमेरिका से यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से मैंने MBA भी किया पिछले साल। जी,
1: तो ये है आपका तालीमी सफ़र। और जापान में आप ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, आप अपने अहले खाना के साथ या मैं और यहाँ कुछ ऐसी एक जनरली, हमने कारोबारी बातें कर ली, एक हल्की फुल्की कुछ बताएं कि आप रहते हैं यहाँ और कैसा लगता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में?
0: जी बिल्कुल, मैं अपनी फैमिली के साथ, 3 बेटियाँ हैं, फैमिली है, वाइफ है, हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और सारी फैमिली को जापान बेहद पसंद है, पुरसकून जगह है। मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ अपने कारोबार के सिलसिले में, बच्चों को यहाँ पर हम छोड़ जाते हैं, यहाँ पर फैमिली होती है, लेकिन कभी मुझे ये नहीं आया कि कोई सेफ्टी, यानी कि बहुत महफूज है, बहुत महफूज मुल्क है और बड़ा हम इन्जॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
1: आप क्या समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर आलमी मार्केट को नौजवानों ने चैलेंज करना हो तो उसके लिए उनको कैसा अंदाज़े फ़िक्र चाहिए होगा?
0: दुनिया में इस वक्त उस बंदे की डिमांड है जो प्रॉब्लम सॉल्वर है। अगर आप मसाइल का हल पेश कर सकते हैं तो पूरी दुनिया आपको मौके देने के लिए तैयार बैठी है। तो ये स्टार्टअप्स की एक नई इकोनॉमी जो है वो दुनिया में स्टार्ट हुई है, यानी कि अगर आप थोड़ा सा इसका इकोनॉमी का बैकग्राउंड देखें तो ये खेतों से या देहाती विलेज इकोनॉमी से इकोनॉमी स्टार्ट होती है, फिर विलेज के बाद ये हमारी सनती जो है वो इनकलाब आया और यहाँ पर इकोनॉमी स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन इकोनॉमी स्टार्ट हुई। इस वक्त जो है वो इकोनॉमी जो है वो स्टार्टअप की इकोनॉमी चल रही है। तो बच्चे जितना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आएं, और यही सलाहियत उनको आगे चाहिए आगे बढ़ने के लिए।
1: नौजवान नस्ल की बात हो रही है तो उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे?
0: मैं यही बात कहूँगा कि अपनी ज़हानत से ज़्यादा डिसिप्लिन के ऊपर और सिविक सेंस के ऊपर तवज्जो दें, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप अपनी सिविक सेंस को ओपन रखते हैं और कंसिस्टेंसी, अपना एतमाद जो है वो हर वक्त उसके ऊपर अगर आप ग्रिप रखते हैं तो आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं और आप एक डिफरेंट तरीके से मुआशरे में मौक़ों को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी सिविक सेंस आपकी ओपन है तो फिर आपको मुआशरे में नज़र आने वाले मसाइल भी नज़र आते हैं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 15 जून सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्लामिक गणराज्य ईरान के साथ समझौता संपन्न हो गया है। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये घोषणा की। उन्होंने लिखा, मैं होर्मुज जलडमरू मध्य को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूर्ण अनुमति देता हूं और साथ ही साथ अमरीकी नौसैनिक घेराबंदी को तत्काल हटाने की भी अनुमति देता हूं। विश्व के सभी जहाज अपने इंजन चालू करो, तेल की आवाजाही बहाल करो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। शरीफ ने सोमवार तड़के सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमरीका और इस्लामिक गणराज्य ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। उन्होंने आगे कहा, दोनों पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है। आधिकारिक हस्ताक्षर कार्यक्रम शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगा। ईरान के विदेश उपमंत्री ने कहा है कि समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। काजिम गरीब आबादी ने सोमवार को सरकारी मीडिया के माध्यम से एक वक्तव्य जारी कर दावा किया कि ईरान ने युद्ध में बड़ी जीत हासिल की है। गरीब आबादी ने कहा कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध की तत्काल और स्थायी समाप्ति के साथ साथ ईरान के खिलाफ अमरीकी नौसैनिक घेराबंदी को तुरंत हटा लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञापन के शेष प्रावधान शुक्रवार को आधिकारिक हस्ताक्षर के बाद प्रभावी हो जाएंगे। उन्होंने जोड़ा कि ईरान के परमाणु विकास कार्यक्रम और उस पर लगे अमरीकी प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में दूसरे चरण यानी 60 दिनों के भीतर चर्चा की जाएगी। विदेश उपमंत्री ने चेतावनी दी कि ईरान के सशस्त्र बलों की उंगली हमेशा ट्रिगर पर रहेगी। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए ने अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन की घोषणा का स्वागत किया है। ताकाइची ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये घोषणा संबंधित देशों द्वारा राजनयिक समाधान की तलाश और लगातार बातचीत का परिणाम है। उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे देशों के प्रयासों की सराहना की। ताकाइची ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समझौता ज्ञापन को उचित रूप से लागू करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य में मुक्त एवं सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अन्य मुद्दों पर जल्द से जल्द अंतिम समझौते की प्रबल आशा भी व्यक्त की।

ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान और ब्रिटेन के नेताओं ने अहम खनिजों सहित आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाए ने रविवार को लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की। बैठक की शुरुआत में ताकायची ने कहा कि जापान और ब्रिटेन सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ बना रहे हैं, जो एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जिसे अर्ध सहयोगी के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। बाद में दोनों प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इस दस्तावेज में नेताओं ने अहम खनिजों सहित विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर लगाए जा रहे मनमाने प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की है। इसमें कहा गया है कि दोनों नेता अहम खनिजों के खनन, शोधन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और भंडारण जैसे क्षेत्रों में G7 सदस्यों और समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ाएंगे। घोषणा पत्र के अनुसार दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच विशेष रूप से ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था

0: के प्रति बढ़े हुए जोखिमों को पहचाना है। इस मुद्दे के संबंध में घोषणापत्र में उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के महत्व की पुष्टि की गई है। इसमें अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन पर सहयोग बढ़ाने की योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। ताकाइची और स्टार्मर इस बात पर भी सहमत हुए कि अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास के लिए वे जापान, ब्रिटेन और इटली के बीच एक संयुक्त कार्यक्रम को गति देंगे। पूर्वी फ्रांस के एवियॉन में सोमवार को G7 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ होने वाला है। बैठक के एजेंडे में ईरान और यूक्रेन जैसे मुद्दे शामिल होने की उम्मीद है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों के नेता संभवतः G7 प्रतिभागियों के साथ ईरान से संबंधित स्थिति पर चर्चा में शामिल होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के भी G7 नेताओं के साथ वार्ता में शामिल होने की संभावना है, जहां यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के संबंध में चर्चा होगी। यूक्रेन से संबंधित विषयों में शांति वार्ता को समर्थन देने के तरीके भी शामिल होने की संभावना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों चाहते हैं कि शिखर सम्मेलन में आर्थिक विषमता कम करने और वैश्विक आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाए। वे आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी प्रकाश डालना चाहते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना शामिल है। नेताओं से उम्मीद की जा रही है कि वे पिछले साल की तरह व्यापक संयुक्त वक्तव्य जारी करने से बचेंगे। इसके बजाय अलग अलग मुद्दों के निष्कर्ष जारी किए जाने की संभावना है। अमरीका और यूरोपीय देशों के बीच संबंध आंशिक रूप से इसलिए खराब हैं क्योंकि यूरोपीय देशों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों को भेजने के प्रति सतर्क रुख अपनाया था। गौरतलब है कि अमेरिका बहुपक्षीय सहयोग की बजाय अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति को बढ़ावा दे रहा है, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के उदय के बीच G7 की उपस्थिति में गिरावट आ रही है। पुरुष फुटबॉल विश्व कप में रविवार को जापान ने अपना पहला मैच खेला। नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला गया ये मैच 2-2 के साथ ड्रॉ रहा। विश्व में 18वीं रैंकिंग वाले जापान और 8वीं रैंकिंग वाले नीदरलैंड्स का मुकाबला अमेरिका के दक्षिणी राज्य टेक्सास के डलास स्टेडियम में हुआ। नीदरलैंड्स ने लगभग 50वें मिनट में पहला गोल दागा, जिसके 6 मिनट बाद जापान के नाकामुरा केइतो ने गोल दाग कर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। करीब 64वें मिनट पर नीदरलैंड्स ने दूसरा गोल किया। खेल समाप्ति की घड़ी नज़दीक आने के साथ ही लगभग 89वें मिनट पर जापान के ओगावा कोकी ने कॉर्नर किक से आ रही गेंद को अपने सिर से नेट की ओर दिशा दी, जो खामादा दाइची के सिर से टकराते हुए नेट में चली गई और स्कोर एक बार फिर बराबरी पर आ गया। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 16वें पाठ में सीखेंगे अपनी राय बताने और समझाने का नया तरीका।
1: चीन से जापान आई फोटोग्राफर मिया तस्वीरें खींचने के लिए नागानो प्रिफेक्चर आई है। वो गर्म पानी के कुंड को देखने आई है जो उसमें नहाते बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। एक जापानी दंपति ने मिया को तस्वीरें खींचते हुए देखा और उससे बात करने लगे।
0: तो आइए सुनते

0: हुए कहा।
1: सर ने इप्पा,
2: वाह इतने सारे बंदर।
0: वो तस्वीरें खींचने में डूबी हुई थी कि तभी वहां पर्यटन के लिए आई एक जापानी दंपति ने उसे आवाज लगाई। पहले महिला ने कहा,
3: ताकसान शशिन वो तोते रुनो ने।
2: आप बहुत सारी तस्वीरें खींच रही हैं।
0: मिया ने जवाब दिया,
1: हाय
2: जी।
1: ここは海外でも有名な温泉です。
2: ये ओनसेन विदेशों में भी प्रसिद्ध है।
0: उसके बाद पुरुष ने कहा,
4: へえ、そうなんだ。
0: अच्छा, ऐसी बात है।
4: 猿が温泉に入るのは珍しいからね。
0: ओनसेन में बैठे बंदर आम नहीं है, इसीलिए ना।
2: तभी मिया को कुछ दिखाई दिया और उसने कहा,
1: 猿の赤ちゃん。
2: अरे बंदर का बच्चा।
1: かわいい。
2: कितना प्यारा है।
0: ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड में बैठे बंदर बहुत प्यारे लग रहे होंगे। वैसे दोस्तों, जब आप जापान घूमने आएंगे और कोई आपसे जापानी भाषा में बात करेगा तो हर बात आपको समझ में नहीं आएगी, पर चिंता की कोई बात नहीं है। आप बस धीरे धीरे अपना शब्द ज्ञान बढ़ाते जाइए।
2: तो आज का मुख्य वाक्य है, यानी प्रसिद्ध ओनसेन है। इस वाक्य को याद करके आप अपनी बात समझा सकेंगे और अपनी राय दे सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: यूमेना
0: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्रसिद्ध।
5: ओनसेन
0: का मतलब तो आप पहले से ही जानते हैं, इसका अर्थ है गर्म पानी का कुंड। और
5: डेस
0: वाक्य को विनम्र बनाने के लिए अंत में लगाया जाता है।
2: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषणों का उपयोग कैसे करते हैं। 12वें पाठ में हमने ई विशेषणों के बारे में बताया था, जिनकी अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
5: कवाई
2: यानी प्यारा।
0: इसके अलावा जापानी भाषा में ना विशेषण भी होते हैं। इनका एक उदाहरण है आज की बातचीत में आया शब्द
5: यूमेना
0: यानी प्रसिद्ध। जब ये विशेषण संज्ञा से पहले लगते हैं तब इनकी अंतिम ध्वनि ना होती है। आज की बातचीत से ही उदाहरण लेते हैं।
5: यूमेना ओनसेन
0: का मतलब है प्रसिद्ध ओनसेन।
2: ना विशेषण का उपयोग वाक्य के अंत में भी किया जा सकता है। ऐसे में अंत का ना हटाकर उसकी जगह देस लगाते हैं, तो
5: यूमेना
2: से बनेगा
5: यूमे देस
2: यानी प्रसिद्ध है।
0: अब आप भी साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कर लें।
5: 有名な温泉です。有名な温泉です。
2: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं।
6: Genki nasaru desu ne.
7: Honto, genki desu ne.
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
6: गेंकी नसारे देस ने।
2: कितना फुर्तीला बंदर है ना।
0: यहाँ
5: गेंकी ना
0: एक ना विशेषण है जिसका अर्थ है फुर्तीला।
5: सर
0: का मतलब है बंदर और वाक्य के अंत में लगा है ने, जिसका उपयोग दूसरे की सहमति की आशा करते समय किया जाता है।
2: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
7: होंतो गेंकी देस ने।
2: सचमुच फुर्तीला है।
0: इस वाक्य में
5: होंतो
0: का अर्थ है सचमुच, ये सहमति दिखाता है। और उसके बाद विशेषण
5: गेंकीना
0: वाक्य के अंत में आया है, इसीलिए ना हटाकर देस लगाया तो बन गया
5: गेंकी देस।
2: तो सुनिए और दोहराइए,
5: गेंकीना सारु, गेंकीना सारु देस ने, गेंकी देस ने।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि बर्फबारी बंद हो गई है और ओनसेन में शांति छा गई है। आप जापानी भाषा में बोलना चाहते हैं, शांत जगह है ना। शांत के लिए जापानी शब्द है
5: शिज़ुकाना
0: और जगह को जापानी भाषा में कहते हैं
5: बाशो।
0: तो कोशिश कीजिए,
8: शिज़ुकाना बाशो देसु ने।
2: शिज़ुकाना बाशो देसु ने। अब मान लीजिए आप बर्फ से

0: ढकी वादियों का सुंदर दृश्य देख रहे हैं और कहना चाहते हैं, सुंदर दृश्य है ना? सुंदर को जापानी भाषा में कहते हैं
1: किरेना,
0: और दृश्य का जापानी शब्द है
1: केशिकी।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: किरेना केशिकी देसु ने। किरेना केशिकी देसु ने।
3: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो जापानी पर्यटक का वाक्य था। आप भी याद कर लीजिए।
4: हे
1: हे,
0: इसका उपयोग किसी की बात पर हैरानी या दिलचस्पी दिखाने के लिए होता है। इससे पता चलता है कि आप दूसरे व्यक्ति की बात में रुचि ले रहे हैं।
3: अब आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
1: हे,
0: किसी की बात दिलचस्प लगे तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
5: たくさん写真を撮っているのね。
6: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
6: 猿の赤ちゃん、かわいい。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
0: अब बारी है अंश घूमे मिया के साथ की। आज हम बता रहे हैं जापान के ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंडों के बारे में।
3: जापान में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, इसलिए पूरे देश में ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड भी बहुत सारे हैं। उनके पानी का रंग, गंध, स्पर्श हर जगह अलग अलग है। ये माना जाता है कि ओनसेन के पानी में थकान दूर करने जैसी चिकित्सीय विशेषताएं भी होती हैं।
0: हालांकि ये भी ओनसेन जाने का एक कारण हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोग दोस्तों और परिजनों के साथ घूमने फिरने के लिए ओनसेन जाते हैं। सराय में ठहरना, खाने पीने का आनंद लेना, देर तक ओनसेन में बैठे रहना, ये साथ में समय बिताने का बहुत अच्छा तरीका है।
3: जापान में बहुत सारे प्रसिद्ध ओनसेन हैं। टोक्यो के पास कोसात्सु ओनसेन लोकप्रिय है। दक्षिण पश्चिमी प्रिफेक्चर ओइता का बेप्पू ओनसेन मशहूर है। ये दोनों पुराने समय से ही लोकप्रिय हैं।
0: इसके अलावा तोहोकु क्षेत्र के पहाड़ों में छिपा न्यूतो ओनसेन भी प्रसिद्ध है। वहाँ का माहौल लोगों को आकर्षित करता है।
3: जापान में घूमकर आप भी अपना मनपसंद ओनसेन ढूंढ सकते हैं।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
3: अगले पाठ में मिया जापानी दंपति के साथ सोबा नूडल्स खाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 15 जून सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्लामिक गणराज्य ईरान के साथ समझौता संपन्न हो गया है। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये घोषणा की। उन्होंने लिखा, मैं होर्मुज जलडमरू मध्य को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूर्ण अनुमति देता हूं और साथ ही साथ अमरीकी नौसैनिक घेराबंदी को तत्काल हटाने की भी अनुमति देता हूं। विश्व के सभी जहाज अपने इंजन चालू करो, तेल की आवाजाही बहाल करो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। शरीफ ने सोमवार तड़के सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमरीका और इस्लामिक गणराज्य ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। उन्होंने आगे कहा, दोनों पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है। आधिकारिक हस्ताक्षर कार्यक्रम शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगा। ईरान के विदेश उपमंत्री ने कहा है कि समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। काज़िम गरीबाबादी ने सोमवार को सरकारी मीडिया के माध्यम से एक वक्तव्य जारी कर दावा किया कि ईरान ने युद्ध में बड़ी जीत हासिल की है। गरीबाबादी ने कहा कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध की तत्काल और स्थायी समाप्ति के साथ साथ ईरान के खिलाफ अमरीकी नौसैनिक घेराबंदी को तुरंत हटा लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञापन के शेष प्रावधान शुक्रवार को आधिकारिक हस्ताक्षर के बाद प्रभावी हो जाएंगे। उन्होंने जोड़ा कि ईरान के परमाणु विकास कार्यक्रम और उस पर लगे अमरीकी प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में दूसरे चरण यानी 60 दिनों के भीतर चर्चा की जाएगी। विदेश उपमंत्री ने चेतावनी दी कि ईरान के सशस्त्र बलों की उंगली हमेशा ट्रिगर पर रहेगी। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए ने अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन की घोषणा का स्वागत किया है। ताकाइची ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये घोषणा संबंधित देशों द्वारा राजनयिक समाधान की तलाश और लगातार बातचीत का परिणाम है। उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे देशों के प्रयासों की सराहना की। ताकाइची ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समझौता ज्ञापन को उचित रूप से लागू करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य में मुक्त एवं सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अन्य मुद्दों पर जल्द से जल्द अंतिम समझौते की प्रबल आशा भी व्यक्त की।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान और ब्रिटेन के नेताओं ने अहम खनिजों सहित आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाए ने रविवार को लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की। बैठक की शुरुआत में ताकायची ने कहा कि जापान और ब्रिटेन सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ बना रहे हैं, जो एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जिसे अर्ध सहयोगी के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। बाद में दोनों प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इस दस्तावेज में नेताओं ने अहम खनिजों सहित विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर लगाए जा रहे मनमाने प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की है। इसमें कहा गया है कि दोनों नेता अहम खनिजों के खनन, शोधन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और भंडारण जैसे क्षेत्रों में G7 सदस्यों और समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ाएंगे। घोषणा पत्र के अनुसार दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच विशेष रूप से ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रति बढ़े हुए जोखिमों को पहचाना है। इस मुद्दे के संबंध में घोषणा पत्र में उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के महत्व की पुष्टि की गई है। इसमें अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन पर सहयोग बढ़ाने की योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। ताकायची और स्टार्मर इस बात पर भी सहमत हुए कि अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास के लिए वे जापान, ब्रिटेन और इटली के बीच एक संयुक्त कार्यक्रम को गति देंगे। पूर्वी फ्रांस के एवियॉन में सोमवार को G7 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ होने वाला है। बैठक के एजेंडे में ईरान और यूक्रेन जैसे मुद्दे शामिल होने की उम्मीद है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों के नेता संभवतः G7 प्रतिभागियों के साथ ईरान से संबंधित स्थिति पर चर्चा में शामिल होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के भी G7 नेताओं के साथ वार्ता में शामिल होने की संभावना है, जहां यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के संबंध में चर्चा होगी। यूक्रेन से संबंधित विषयों में शांति वार्ता को समर्थन देने के तरीके भी शामिल होने की संभावना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों चाहते हैं कि शिखर सम्मेलन में आर्थिक विषमता कम करने और वैश्विक आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाए। वे आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी प्रकाश डालना चाहते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना शामिल है। नेताओं से उम्मीद की जा रही है कि वे पिछले साल की तरह व्यापक संयुक्त वक्तव्य जारी करने से बचेंगे। इसके बजाय अलग अलग मुद्दों के निष्कर्ष जारी किए जाने की संभावना है। अमरीका और यूरोपीय देशों के बीच संबंध आंशिक रूप से इसलिए खराब हैं क्योंकि यूरोपीय देशों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों को भेजने के प्रति सतर्क रुख अपनाया था। गौरतलब है कि अमेरिका बहुपक्षीय सहयोग की बजाय अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति को बढ़ावा दे रहा है, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के उदय के बीच G7 की उपस्थिति में गिरावट आ रही है। पुरुष फुटबॉल विश्व कप में रविवार को जापान ने अपना पहला मैच खेला। नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला गया ये मैच 2-2 के साथ ड्रॉ रहा। विश्व में 18वीं रैंकिंग वाले जापान और 8वीं रैंकिंग वाले नीदरलैंड्स का मुकाबला अमेरिका के दक्षिणी राज्य टेक्सास के डलास स्टेडियम में हुआ। नीदरलैंड्स ने लगभग 50वें मिनट में पहला गोल दागा, जिसके 6 मिनट बाद जापान के नाकामुरा केइतो ने गोल दाग कर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। करीब 64वें मिनट पर नीदरलैंड्स ने दूसरा गोल किया। खेल समाप्ति की घड़ी नज़दीक आने के साथ ही लगभग 89वें मिनट पर जापान के ओगावा कोकी ने कॉर्नर किक से आ रही गेंद को अपने सिर से नेट की ओर दिशा दी, जो कामादा दाइची के सिर से टकराते हुए नेट में चली गई और स्कोर एक बार फिर बराबरी पर आ गया। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 16वें पाठ में सीखेंगे अपनी राय बताने और समझाने का नया तरीका।
1: चीन से जापान आई फोटोग्राफर मिया तस्वीरें खींचने के लिए नागानो प्रिफेक्चर आई है। वो गर्म पानी के कुंड को देखने आई है जो उसमें नहाते बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। एक जापानी दंपति ने मिया को तस्वीरें खींचते हुए देखा और उससे बात करने लगे।
0: तो आइए सुनते हैं 16वें पाठ की बातचीत।
2: たくさん写真を撮っているのね。
3: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
3: 猿の赤ちゃん、かわいい。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने हैरान होते

0: कवाई
1: कितना प्यारा है।
2: ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड में बैठे बंदर बहुत प्यारे लग रहे होंगे। वैसे दोस्तों, जब आप जापान घूमने आएंगे और कोई आपसे जापानी भाषा में बात करेगा तो हर बात आपको समझ में नहीं आएगी, पर चिंता की कोई बात नहीं है, आप बस धीरे धीरे अपना शब्द ज्ञान बढ़ाते जाइए।
1: तो आज का मुख्य वाक्य है
0: युमेना ओनसेन देस,
1: यानी प्रसिद्ध ओनसेन है। इस वाक्य को याद करके आप अपनी बात समझा सकेंगे और अपनी राय दे सकेंगे।
2: इस वाक्य में
0: युमेना
2: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्रसिद्ध।
0: ओनसेन
2: का मतलब तो आप पहले से ही जानते हैं, इसका अर्थ है गर्म पानी का कुंड, और
0: देस
2: वाक्य को विनम्र बनाने के लिए अंत में लगाया जाता है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषणों का उपयोग कैसे करते हैं। 12वें पाठ में हमने ई विशेषणों के बारे में बताया था, जिनकी अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
0: कवाई
1: यानी प्यारा।
2: इसके अलावा जापानी भाषा में ना विशेषण भी होते हैं। इनका एक उदाहरण है आज की बातचीत में आया शब्द
0: युमेना
2: यानी प्रसिद्ध। जब ये विशेषण संज्ञा से पहले लगते हैं तब इनकी अंतिम ध्वनि ना होती है। आज की बातचीत से ही उदाहरण लेते हैं,
0: युमेना ओनसेन
2: का मतलब है प्रसिद्ध ओनसेन।
1: ना विशेषण का उपयोग वाक्य के अंत में भी किया जा सकता है। ऐसे में अंत का ना हटाकर उसकी जगह देस लगाते हैं, तो
0: युमेना
1: से बनेगा
0: युमे देस,
1: यानी प्रसिद्ध है।
2: अब आप भी साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कर लें।
0: युमेना ओनसेन देस, युमेना ओनसेन देस।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं।
3: गेंकी नासारु देसु ने,
4: होंतो गेंकी देसु ने।
2: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा
3: गेंकी नासारु देसु ने,
1: कितना फुर्तीला बंदर है ना।
2: यहाँ
0: गेंकी ना
2: एक ना विशेषण है जिसका अर्थ है फुर्तीला।
0: सारु
2: का मतलब है बंदर और वाक्य के अंत में लगा है ने, जिसका उपयोग दूसरे की सहमति की आशा करते समय किया जाता है।
1: जवाब में दूसरी महिला ने कहा
4: होंतो गेंकी देसु ने,
1: सचमुच फुर्तीला है।
2: इस वाक्य में
0: होंतो
2: का अर्थ है सचमुच, ये सहमति दिखाता है, और उसके बाद विशेषण
0: गेंकी ना
2: वाक्य के अंत में आया है, इसीलिए ना हटाकर देस लगाया तो बन गया
0: गेंकी देसु।
1: तो सुनिए और दोहराइए
0: गेंकी ना सारु, गेंकी ना सारु देसु ने, गेंकी देसु ने।
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि बर्फबारी बंद हो गई है और ओनसेन में शांति छा गई है। आप जापानी भाषा में बोलना चाहते हैं शांत जगह है ना। शांत के लिए जापानी शब्द है
0: शिज़ुकाना,
2: और जगह को जापानी भाषा में कहते हैं
0: बाशो।
2: तो कोशिश कीजिए
5: शिज़ुकाना बाशो देसु ने, शिज़ुकाना बाशो देसु ने।
1: अब मान लीजिए आप बर्फ से ढकी वादियों का सुंदर दृश्य देख रहे हैं और कहना चाहते हैं सुंदर दृश्य है ना। सुंदर को जापानी भाषा में कहते हैं
0: किरेना,
1: और दृश्य का जापानी शब्द है
0: केशिकी।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए
3: किरेना केशिकी देसु ने, किरेना केशिकी देसु ने।
2: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो जापानी पर्यटक का वाक्य था। आप भी याद कर लीजिए
6: हे
0: हे।
1: इसका उपयोग किसी की बात पर हैरानी या दिलचस्पी दिखाने के लिए होता है।

0: होता है, इससे पता चलता है कि आप दूसरे व्यक्ति की बात में रुचि ले रहे हैं।
1: अब आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
2: हे,
0: किसी की बात दिलचस्प लगे तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。ミーヤーのトラベルガイド。
0: अब बारी है अंश घूमे मिया के साथ की। आज हम बता रहे हैं जापान के ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंडों के बारे में।
1: जापान में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, इसलिए पूरे देश में ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड भी बहुत सारे हैं। उनके पानी का रंग, गंध, स्पर्श हर जगह अलग अलग है। ये माना जाता है कि ओनसेन के पानी में थकान दूर करने जैसी चिकित्सीय विशेषताएं भी होती हैं।
0: हालांकि ये भी ओनसेन जाने का एक कारण हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोग दोस्तों और परिजनों के साथ घूमने फिरने के लिए ओनसेन जाते हैं। सराय में ठहरना, खाने पीने का आनंद लेना, देर तक ओनसेन में बैठे रहना, ये साथ में समय बिताने का बहुत अच्छा तरीका है।
1: जापान में बहुत सारे प्रसिद्ध ओनसेन हैं। टोक्यो के पास कोसात्सु ओनसेन लोकप्रिय है। दक्षिण पश्चिमी प्रिफेक्चर ओइता का बेप्पू ओनसेन मशहूर है। ये दोनों पुराने समय से ही लोकप्रिय हैं।
0: इसके अलावा तोहोकु क्षेत्र के पहाड़ों में छिपा न्यूतो ओनसेन भी प्रसिद्ध है। वहाँ का माहौल लोगों को आकर्षित करता है।
1: जापान में घूमकर आप भी अपना मनपसंद ओनसेन ढूंढ सकते हैं।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में मिया जापानी दंपति के साथ सोबा नूडल्स खाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 15 जून सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्लामिक गणराज्य ईरान के साथ समझौता संपन्न हो गया है। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये घोषणा की। उन्होंने लिखा, मैं होर्मुज जलडमरू मध्य को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूर्ण अनुमति देता हूं और साथ ही साथ अमरीकी नौसैनिक घेराबंदी को तत्काल हटाने की भी अनुमति देता हूं। विश्व के सभी जहाज अपने इंजन चालू करो, तेल की आवाजाही बहाल करो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। शरीफ ने सोमवार तड़के सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमरीका और इस्लामिक गणराज्य ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। उन्होंने आगे कहा, दोनों पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है। आधिकारिक हस्ताक्षर कार्यक्रम शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगा। ईरान के विदेश उपमंत्री ने कहा है कि समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। काज़िम गरीबाबादी ने सोमवार को सरकारी मीडिया के माध्यम से एक वक्तव्य जारी कर दावा किया कि ईरान ने युद्ध में बड़ी जीत हासिल की है। गरीबाबादी ने कहा कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध की तत्काल और स्थायी समाप्ति के साथ साथ ईरान के खिलाफ अमरीकी नौसैनिक घेराबंदी को तुरंत हटा लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञापन के शेष प्रावधान शुक्रवार को आधिकारिक हस्ताक्षर के बाद प्रभावी हो जाएंगे। उन्होंने जोड़ा कि ईरान के परमाणु विकास कार्यक्रम और उस पर लगे अमरीकी प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में दूसरे चरण यानी 60 दिनों के भीतर चर्चा की जाएगी। विदेश उपमंत्री ने चेतावनी दी कि ईरान के सशस्त्र बलों की उंगली हमेशा ट्रिगर पर रहेगी। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए ने अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन की घोषणा का स्वागत किया है। ताकाइची ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये घोषणा संबंधित देशों द्वारा राजनयिक समाधान की तलाश और लगातार बातचीत का परिणाम है। उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे देशों के प्रयासों की सराहना की। ताकाइची ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समझौता ज्ञापन को उचित रूप

लागू करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य में मुक्त एवं सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अन्य मुद्दों पर जल्द से जल्द अंतिम समझौते की प्रबल आशा भी व्यक्त की।

ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान और ब्रिटेन के नेताओं ने अहम खनिजों सहित आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाए ने रविवार को लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की। बैठक की शुरुआत में ताकायची ने कहा कि जापान और ब्रिटेन सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ बना रहे हैं, जो एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जिसे अर्ध सहयोगी के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। बाद में दोनों प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इस दस्तावेज में नेताओं ने अहम खनिजों सहित विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर लगाए जा रहे मनमाने प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की है। इसमें कहा गया है कि दोनों नेता अहम खनिजों के खनन, शोधन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और भंडारण जैसे क्षेत्रों में G7 सदस्यों और समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ाएंगे। घोषणा पत्र के अनुसार दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच विशेष रूप से ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रति बढ़े हुए जोखिमों को पहचाना है। इस मुद्दे के संबंध में घोषणा पत्र में उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के महत्व की पुष्टि की गई है। इसमें अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन पर सहयोग बढ़ाने की योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। ताकायची और स्टार्मर इस बात पर भी सहमत हुए कि अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास के लिए वे जापान, ब्रिटेन और इटली के बीच एक संयुक्त कार्यक्रम को गति देंगे। पूर्वी फ्रांस के एवियॉन में सोमवार को G7 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ होने वाला है। बैठक के एजेंडे में ईरान और यूक्रेन जैसे मुद्दे शामिल होने की उम्मीद है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों के नेता संभवतः G7 प्रतिभागियों के साथ ईरान से संबंधित स्थिति पर चर्चा में शामिल होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के भी G7 नेताओं के साथ वार्ता में शामिल होने की संभावना है, जहां यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के संबंध में चर्चा होगी। यूक्रेन से संबंधित विषयों में शांति वार्ता को समर्थन देने के तरीके भी शामिल होने की संभावना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों चाहते हैं कि शिखर सम्मेलन में आर्थिक विषमता कम करने और वैश्विक आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाए। वे आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी प्रकाश डालना चाहते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना शामिल है। नेताओं से उम्मीद की जा रही है कि वे पिछले साल की तरह व्यापक संयुक्त वक्तव्य जारी करने से बचेंगे। इसके बजाय अलग अलग मुद्दों के निष्कर्ष जारी किए जाने की संभावना है। अमरीका और यूरोपीय देशों के बीच संबंध आंशिक रूप से इसलिए खराब हैं क्योंकि यूरोपीय देशों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों को भेजने के प्रति सतर्क रुख अपनाया था। गौरतलब है कि अमेरिका बहुपक्षीय सहयोग की बजाय अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति को बढ़ावा दे रहा है, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के उदय के बीच G7 की उपस्थिति में गिरावट आ रही है। पुरुष फुटबॉल विश्व कप में रविवार को जापान ने अपना पहला मैच खेला। नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला गया ये मैच 2-2 के साथ ड्रॉ रहा। विश्व में 18वीं रैंकिंग वाले जापान और 8वीं रैंकिंग वाले नीदरलैंड्स का मुकाबला अमेरिका के दक्षिणी राज्य टेक्सास के डलास स्टेडियम में हुआ। नीदरलैंड्स ने लगभग 50वें मिनट में पहला गोल दागा, जिसके 6 मिनट बाद जापान के नाकामुरा केइतो ने गोल दागकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। करीब 64वें मिनट पर नीदरलैंड्स ने दूसरा गोल किया। खेल समाप्ति की घड़ी नज़दीक आने के साथ ही लगभग 89वें मिनट पर जापान के ओगावा कोकी ने कॉर्नर किक से आ रही गेंद को अपने सिर से नेट की ओर दिशा दी, जो खामादा दाइची के सिर से टकराते हुए नेट में चली गई और स्कोर एक बार फिर बराबरी पर आ गया। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 16वें पाठ में सीखेंगे अपनी राय बताने और समझाने का नया तरीका।
1: चीन से जापान आई फोटोग्राफर मिया तस्वीरें खींचने के लिए नागानो प्रिफेक्चर आई है। वो गर्म पानी के कुंड को देखने आई है जो उसमें नहाते बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। एक जापानी दंपति ने मिया को तस्वीरें खींचते हुए देखा और उससे बात करने लगे।
0: तो आइए सुनते हैं 16वें पाठ की बातचीत।
2: たくさん写真を撮っているのね。
3: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
3: 猿の赤ちゃん、かわいい。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने हैरान होते हुए कहा,
3: सर गा इप्पाई,
1: वाह इतने सारे बंदर।
0: वो तस्वीरें खींचने में डूबी हुई थी कि तभी वहाँ पर्यटन के लिए आई एक जापानी दंपति ने उसे आवाज लगाई। पहले महिला ने कहा,
2: ताकुसान शशी वो तो तेरे नो ने,
1: आप बहुत सारी तस्वीरें खींच रही हैं।
0: मिया ने जवाब दिया,
3: हाय
1: जी,
3: ここは海外でも有名な温泉です。
1: ये ओनसेन विदेशों में भी प्रसिद्ध है।
0: उसके बाद पुरुष ने कहा,
4: हे सो नंदा,
0: अच्छा ऐसी बात है।
4: सरगा ओनसेन में हाइरु नो वा मेजुराशी करा ने,
0: ओनसेन में बैठे बंदर आम नहीं है इसीलिए ना।
1: तभी मिया को कुछ दिखाई दिया और उसने कहा,
3: सरु नो अकाचा,
1: अरे बंदर का बच्चा,
3: कावाई,
1: कितना प्यारा है।
0: ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड में बैठे बंदर बहुत प्यारे लग रहे होंगे। वैसे दोस्तों, जब आप जापान घूमने आएंगे और कोई आपसे जापानी भाषा में बात करेगा तो हर बात आपको समझ में नहीं आएगी, पर चिंता की कोई बात नहीं है। आप बस धीरे धीरे अपना शब्द ज्ञान बढ़ाते जाइए।
1: तो आज का मुख्य वाक्य है,
3: यूमेना ओनसेन देसु,
1: यानी प्रसिद्ध ओनसेन है। इस वाक्य को याद करके आप अपनी बात समझा सकेंगे और अपनी राय दे सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: यूमेना
0: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्रसिद्ध।
5: ओनसेन
0: का मतलब तो आप पहले से ही जानते हैं, इसका अर्थ है गर्म पानी का कुंड। और
5: देस
0: वाक्य को विनम्र बनाने के लिए अंत में लगाया जाता है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषणों का उपयोग कैसे करते हैं। 12वें पाठ में हमने ई विशेषणों के बारे में बताया था जिनकी अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
5: कावाई
1: यानी प्यारा।
0: इसके अलावा जापानी भाषा में ना विशेषण भी होते हैं। इनका एक उदाहरण है आज की बातचीत में आया शब्द
5: यूमेना
0: यानी प्रसिद्ध। जब ये विशेषण संज्ञा से पहले लगते हैं तब इनकी अंतिम ध्वनि ना होती है। आज की बातचीत से ही उदाहरण लेते हैं।
5: यूमेना ओनसेन

0: 元気な猿ですね。
1: 本当、元気ですね。
2: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
0: गेंकी ना सारे देसु ने।
3: कितना फुर्तीला बंदर है ना?
2: यहाँ
4: गेंकी ना
2: एक ना विशेषण है जिसका अर्थ है फुर्तीला।
4: सारे
2: का मतलब है बंदर और वाक्य के अंत में लगा है ने जिसका उपयोग दूसरे की सहमति की आशा करते समय किया जाता है।
3: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
1: गेंकी देसु ने।
3: सचमुच फुर्तीला है।
2: इस वाक्य में
4: होंतो
2: का अर्थ है सचमुच। ये सहमति दिखाता है और उसके बाद विशेषण
4: गेंकीना
2: वाक्य के अंत में आया है, इसीलिए ना हटाकर देस लगाया तो बन गया
4: गेंकी देस।
3: तो सुनिए और दोहराइए,
4: गेंकीना सर, गेंकीना सर देस ने, गेंकी देस ने।
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि बर्फबारी बंद हो गई है और ओनसेन में शांति छा गई है। आप जापानी भाषा में बोलना चाहते हैं, शांत जगह है ना? शांत के लिए जापानी शब्द है
4: शिज़ुकाना
2: और जगह को जापानी भाषा में कहते हैं
4: बाशो।
2: तो कोशिश कीजिए,
5: शिज़ुकाना बाशो देसु ने, शिज़ुकाना बाशो देसु ने।
3: अब मान लीजिए आप बर्फ से ढकी वादियों का सुंदर दृश्य देख रहे हैं और कहना चाहते हैं सुंदर दृश्य है ना? सुंदर को जापानी भाषा में कहते हैं
4: किरेना
3: और दृश्य का जापानी शब्द है
4: केशिकी।
3: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए,
0: किरेना केशिकी देसु ने, किरेना केशिकी देसु ने।
2: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो जापानी पर्यटक का वाक्य था। आप भी याद कर लीजिए,
6: हे
4: हे।
3: इसका उपयोग किसी की बात पर हैरानी या दिलचस्पी दिखाने के लिए होता है। इससे पता चलता है कि आप दूसरे व्यक्ति की बात में रुचि ले रहे हैं।
2: अब आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए,
4: हे।
3: किसी की बात दिलचस्प लगे तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
7: सारे ना इप्पाई
8: ताकसान शाशिन वो तोत्ते इरु नो ने।
7: हाय, ここは海外でも有名な温泉です。
6: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
7: 猿の赤ちゃん、かわいい。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
3: अब बारी है अंश घूमे मिया के साथ की। आज हम बता रहे हैं जापान के ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंडों के बारे में।
2: जापान में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, इसलिए पूरे देश में ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड भी बहुत सारे हैं। उनके पानी का रंग, गंध, स्पर्श हर जगह अलग अलग है। ये माना जाता है कि ओनसेन के पानी में थकान दूर करने जैसी चिकित्सीय विशेषताएं भी होती हैं।
3: हालांकि ये भी ओनसेन जाने का एक कारण हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोग दोस्तों और परिजनों के साथ घूमने फिरने के लिए ओनसेन जाते हैं। सराय में ठहरना, खाने पीने का आनंद लेना, देर तक ओनसेन में बैठे रहना, ये साथ में समय बिताने का बहुत अच्छा तरीका है।
2: जापान में बहुत सारे प्रसिद्ध ओनसेन हैं। टोक्यो के पास कोसात्सु ओनसेन लोकप्रिय है। दक्षिण पश्चिमी प्रिफेक्चर ओइता का बेप्पू ओनसेन मशहूर है। ये दोनों पुराने समय से ही लोकप्रिय हैं।
3: इसके अलावा तोहोकु क्षेत्र के पहाड़ों में छिपा न्यूतो ओनसेन भी प्रसिद्ध है। वहाँ का माहौल लोगों को आकर्षित करता है।
2: जापान में घूमकर आप भी अपना मनपसंद ओनसेन ढूंढ सकते हैं।

0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में मिया जापानी दंपति के साथ सोबा नूडल्स खाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।